अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ये करना है कि कारी स्नान सेवन करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया, इसका फल की मिल

ते शरीर रोग भी चले ले मर्दाने तू साडे बस्तर पर असी वेई नदी विच इशनान कर मर्दाने ने बस्तर पकड़े हजूर वेई नदी विच प्रवेश करदे हन चुबी मारदे हन फिर पैरी साध संगत बाहर नहीं निकले आखो श्री बाबे ने ऐसी चुप्पी मारी मर्दाना बड़ा चिर उड़ीकदा रे पातशाह हुण बाहर आउंदे हन हुण पानी विचों बाहर निकलदे पर हजूर निकले मर्दाना नदी दे कंडे ते कदे इधर भज्जा जांदा है बाबा किधर गए हो कदे इधर भज्जा दिन चढ़ गया अजे भी बाबा बाहर नहीं आया कहरी सास संगत बेबे नानकी नू जाके लोका ने कहा धन गुरु नानक पातशाह जी दे प्यार वाले ने जाके कहा बेबे तेरे वीर ने वेई नदी विच चुभी मारी है बाहर नहीं आया प्रेमी तो अखां विचों पानी बहा रहे जिन्हां दे अंदर गुरु नानक दा प्यार सी उन्हां दे अखां विचों तो प्यार दे आंसू जा रहे हैं पर जो लोग नुक्ताचीन सन नास्तिक सन उन्होंने कहा गुरु नानक डूब गया आखो श्री दौलत खान आली हिसाब किताब करना सी मोदी खाने का मोदी खाना गरीबा नु लुटा दिता है इस भाइये जराम नू भी बड़ी उदासी पर बेबे नानकी ने कहा तुसी उदास ना हो नानकी तलवंडी तो नाल लेके आया सा नानक नो मैं ते कालू ने कहा सी जयराम इस नो किसी कम लाओ मोदी खाना ले दिता पर आज पता नहीं की होया बेबे ने कहा नहीं तुसी उदास ना हो मेरा वीर कदे डूब नहीं सकता ओ ता डूबिया नु उतारन वास्ते आया किसे महापुरुष ने लिखे चंद्रमा दी मिसाल दित्ती है गुरु दी भी चंद्रमा की करदा है ते गुरु की करदा तो लिखे है कालू चंद दिया नूर भरे चन्ना चन्नो सौ गुणा वध लिशकारदा है चढ़े चंद ता डूबदा तारिया नू तो ता डूबिया होया नू चंद्रमा चढ़ जाए तारिया दी लो मधम पै जांदी फिर चंद्रमा दुनिया नू रोशनी देंदा है दे मथे ते कालक लगी स्याही अपनी चन्न तो नहीं लेंदी तू लखां दी स्याही उतारदा है फिर उच्चा वसना है अरश दे किंगरे ते ऐ पर नीवियां ते चाती मार तो कहरी सत्संग सारे सुल्तानपुर च बड़ा प्रोपेगंडा हो रहा आखिरकार हजूर वेई नदी दे विच भी मार के किथे पहुंचे सचखंड पहुंचे अगे नूर ही नूर है सचखंड दे दरवाजे अगे हजूर ने तकिया लखाई मोहम्मद लखाई रामचंद लखाई कृष्ण लखाई गोरख लखाई देवी देवते खड़ोते तो साहबाने थे शब्द उच्चारण कीते है जित दर लख मोहम्मदा लख ब्रह्मा विष्णु महेश लख लख राम वडीरिया लख राही लख ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर तो दर्ज नहीं है
ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ

रसना खाली ना रहे। सचखंड विचों ए नाम जो अज धन गुरु नानक पातशाह जी नू बख्शिश हो रही है, वो केड़ा नाम सी

अपराधी दुणा ने वे जो हुत्ता मेरे का सिस्ते वाया क्या थिया जारी देख सुते जाए मुला पहला।

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा एक जरा पर भी, एक छिन पर भी इहदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौं खा के कहना। या मैं रंच न मिथ्या पाकी पार

भावे मेरी जात होची है मेरी पत होची है पर मैं इकला जरूर खटिया जेड़ा आम आदमी नू नहीं मिलता। असी लोग आम जग्यासु जीव सारी उम्र छोटे छोटे लाभां नू वेखदे रहने भाई बड़ा कुछ कमा के बड़ा कुछ पा के चीज दी समझ आंदी है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं है। जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे वो सारी उम्र नसा फिरदा है दौलत दे मगर, पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर पता लगता है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है। कबीर साहब कहंदे हन होछी मत मेरी जात जुलाहा हर का नाम लियो मैला।

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे बादशाह कहंदे ने ओना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन्हां ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन, खत्म हो जांदे नी।

मनुख भक्ति करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है महापुरुषां दे चरणां दी पूजा कर।

खारे दांत मंगो आज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी ओ जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रा च विसाओ हिरदे ते विसाओ आज राय बुलार अरदास पिया कर रहा है आओ जिसने धरती नु पुटे ओनू पानी जरूर मिलिया जिसने खोजिया ओनू मालिक लब्भा है ते जिस सिख ने मन जोड़ के बेनती कीती है ओदी अरदास जरूर सुनी जाए आए आओ प्यारी साध संगत अज दा है समा ए रात खास बख्शिश वाली की पता हो जाए बख्शिश कोई वड्डी गल नहीं तो आओ तरला तो करो उद्यम तो करो ओ केड़ा उद्यम है अपने मालिक अगे अरदास सब तू वड्डी दात है जो गुरु ने सिख नु बख्शी है अरदास जिस अरदास दे सदके सिख गुरु नाल जुड़ जाना है राय बुलार रो

पिताजी मेरे ननकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे ननकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावन ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दी पुब्बा निकल गई। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नु की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नु मुखातब होके कहंदा की

की कहती है, जहां भी जा निकलता हूँ यही कहती मुझे खलकती, वो देखो आया दीवाना।

अरदास सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दूध है, माता बेसुध पई है, दूध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन इशनान कीता, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कढे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखेया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लेंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोल दियां कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है, ते बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुक के मुंह च पा लेंदा। अज भी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा, तली उत्ते मक्खन पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उड़िया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सचे पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सचे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सचे पातशाह? अदूर कहन लगे हां मरदाने तारां भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेबे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फायदा बन गई न पुराने आरती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है। ए जरा कीर्तन हुंदा है ना, ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नू उपदेश देंदे ने। किसे गुरमुख ने लिखिया है कि तार विन दी चीजां परोम दीए, तार विन दी चीजां परोम दीए, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी। पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन दी चित चुराई जांदी। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी? मरदाने नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 सालां तों विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तों, नेत्र बंद कीते खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानकियाने दियां गलियां च पिया जांदा है। आखो सही वाली, पर मरदाना काला है, 12 सालां तों बाद घर आया है, एना कलम काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करते सन के भाई जिस वेले गुरु नानक तलवंडी आया ते हजूर ने मरदाने नु क्या, मरदाने ए पढ़ की

है जैसे सपना बिन लखनबा बारू भीत बनाई रचपत रहत नहीं दिन जा तैसे ही सुख माया के उज्जो कहां दवा अनु समझ लस दिगरियो ना हनी अनु समझ

राग गौड़ी दक्षिणी विच ऋषभ धैवत कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच गंधार धैवत सुर वर्जित हैं। इस दी जाति औडव संपूर्ण, वादी ऋषभ, संवादी पंचम अते समा सवेर दा पहला पैर है। इस राग विच नाम मिले चले मैं नाल शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह करीर।

राजा कूट पर जा कूट सब संसार कूट मंडप कूट माड़ी कूट बैसनहार कूट सोना कूट रूपा।

खत्री शब्द शुद्ध शब्द शुद्ध शब्द प्राकृत सर्व शब्द एक शब्द जो जाने पियो नानक दास है सो नंदन दियो महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा बस जे

लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सदल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत भियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उसके मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उसदे मगर लग पई आ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। यह ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। घागड़ी धर्म धृग तांग दागड़ी दिम दिरना, बागड़ी ब्रिकते बांग तागड़ी तोम तोम तोम दिरना, दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। यह साहब जी ने तराना गाया। तो इसका मतलब है दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। यह अर्थ है कि कुम किरना तुम पलटे लगाने सरगमा लगा और ताना लगानी कुम किरना नाल दे दे ताल दागर दी दे दे ताल। जे तुसी ताना लगाते हो ताल का ना ख्याल भुल जाए, ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना, बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना, इसनू कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कढ दिओ बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल के विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ी दे दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

0: अमृतसर सतगुर सत भक्ति जित नत्ते कौआ हंस होवे
1: सतगुर
0: अमृतसर की अमृत गुर अमृतसर न बढ़ाया सब लाथे किल वेख पंग
1: सतगुर

श्रवण करो भाई बलबीर सिंह जी दे रागी जति पासु शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।

बिसर गई सब तात जब ते साध संगत मोह पाए रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल।

गाना सगल संग हम गवण आई जो बाबी न वरमान हो मस में साधु दे भाई सामने रव रया रव रया रव रया आ बाबे कहे सब में रव रया।

राग सोरठ वाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। इफ यू आर द माउंटेन लॉर्ड देन आई एम द पीकॉक। जो तुम चांद तो हम पहे हैं चकोरा। इफ यू आर द मून देन आई एम द पार्ट्रिज इन लव विद इट। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। तुम स्यों तोर कवन स्यों जोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन ज्वाइन। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती। इफ यू आर द लैम्प देन आई एम द विक। इफ यू आर द सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज देन आई एम द पिलग्रिम। साची प्रीत हम तुम से जोरी। तुम से अवर संग तोरी। आई एम जॉइंड इन ट्रू लव विद यू ओ लॉर्ड। आई एम जॉइंड विद यू एंड आई हैव ब्रोकन विद ऑल अदर्स। जह जह जाऊं तहां तेरी सेवा। तुम सो ठाकुर और ना देवा। Wherever I go, there I serve you. There is no other Lord, Master than you, O Divine Lord. Tumre bhajan kate jam phansa, bhagat het gaave ravidasa. Meditating, vibrating upon you, the noose of death is cut away. To attain devotional worship, Ravidas sings to you, O Master. Madhve, tum na toro. तो हम नहीं तोरे। तुम स्यों तोर कवन स्यों जोरे। राग सोरठ ताल छोटी तिन ताल 16 बीट्स।

राग टोडी विच आप जी शब्द सरण करोगे। पंचम पातशाह जी रचना है। गुरु ग्रंथ साहिब जिस राग विच शब्द दर्ज है उसे विच आप जी इस सरवण करोगे।